0: ये से मिडलैंड मिडलैंड प्रिंस ओवर
1: रिसीविंग ओवर
0: मिडलैंड देयर इज अ ट्रेन ऑन प्लेटफॉर्म 2 and 3 2 विल डिपार्ट फर्स्ट इफ यू कैन मूव पैसेंजर्स फ्रॉम प्लेटफॉर्म 3 to 2 ओवर